परिचय चाहिए बिकॉज ऑफ द थिंग्स दे आर गोइंग थ्रू व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू जस्ट से दिलाना बोंकोसियन जस्ट लिस्ट एवरीथिंग